पौन पानी में संतन चंद सूरज उतार सभी धरती माल तन पर तन संग जार नाम सह ज्ञान में मुनि भाई गया जम काल मुदा पहला वाइन चले तन चंगुर पैर हलान फिर सिर उठो रामा छठे पाए वे खेलो कसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपाव निरंकार सच नाम जाकर किया सर जहान सेवक सेवक कर्म चढ़ाओ तिन्हें रंजना मचाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नगर करी नगरी कर्म लगाए पार बोलो चखा चक्की चक थल मारो ले बहुत अनंत लाटू मा दाणी आन गा पंखी पौंदिया लड़ना सा सुए चढ़ को आइए जंत नानक पौंदिया लड़ता आया तय अंदर मन को आए सुए पैके तुझे सब कोए नच नच असे चले सरोट न जाई सुधना होए।

हम देखिया सुमंतवरों स्थिर हम देखिया एक वस्त्र अनूप दिखाई एक वस्त्र अनूप दिखाई गुरमुख टूंड टूंड दिया हर सच

गग गोगन कुंद्रवो सास सास जपनीत कांब सासा देता बिल मना करियो मीत मैं बार

चलने चलना हार बिचारा ले मनो चले चलना हार बिचारा ले मनो गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठी जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गए

छिल छिल और बेहात है, फूटे कर जो पानी सो दिन आवन लागा, सो दिन आवन लागा। माँ पिता पाई सुत बनता, कहां को है कांका, जब लग जोत का मैं बरते आप न बूझे, लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे। कह कबीर सुनोरे प्राणी, कह कबीर सुनोरे प्राणी, छोड़ो।

रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कावे से कुसाई खां सबे उठ जासी।

कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कहता ही कर कर पाप, पाप बुरा पापी को प्यारा, कर कर पाप दर्ब किया। तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, कर कर पाप दर्ब किया।

Addig ráadásul már. अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे है।

अभी चंदन हंकार ना कर, तेरे अंदर भी शीतलता है पर तेरे नालों हजारां गुणा शीतलता होर जगह ते है। ओ केड़ी जगह है? तो लिखिया रे चंदन गर्वे कहा हाउ ही शीतल अंग, तुझते शीतल सौ गुणा संतों का सतसंग। इथे महापुरुष बैठे, ओ जगह ते बड़ी ठंड है, बड़ा आनंद है। रानी तारा ने सोचिया जे सच बोल दी या उस आनंद तो वांझी रह जावांगी, पर मेरा तो जीवन है सत्संग। ते जे झूठ बोल दी या ता पति परमेश्वर है, दुनियादारी दा रिश्ता है। राजे ने फिर किया, रानी बोल दी क्यों नहीं, तू राती किथे गई है? रानी तारा ने सोचिया मना, दुनियादारी नालों ते अज भी टूटी ते कल भी टूटी, पर मेरी वाहगुरु नालों ना टूटी। जे वाहगुरु नाल बन आएगी तो दुनिया नाल भी बन आएगी। बाबा जी बचन कर दे सन, एक नू मित्र बना ले सारी दुनिया मित्र बन जाए, जहां का मीत साजन है सन।

रही है, जो आज सत्संग विच आनंद आया है ओ राज गद्दी ते बह के भी जी, जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना रही है। प्यारी सत्संगत राड़े राणी दे उद्दम नाल राजा सत्संगी बन गया। स्त्री नु वाहिगुरु ने बड़ा फल दिता, यही तो इन कहते अबला है, पर मैं तो कहना आदमी नालो स्त्री ज्यादा ताकत ज्यादा बल है। तुसी तक लो ना, स्त्री दो कारावाद कर दी, स्त्री जो है ए दो कर, अपने पिता का घर भी आबाद कर दी है ते अपने सहुरियां का घर। आदमी इको घर ही आबाद करता है, अगो श्री वाहिगुरु, ये विचार दी बात है। फिर ए अंदर बल ज्यादा होया ना, ताई ओ बाबे ने स्त्री नु बड़ा मान बख्शे। स्त्री दे हाथ विच सब कुछ है, ए पति नु जैसा चाहे बना सकदी, एदे अंदर ताकत, पर थोड़ा जिहा तहमल चाहिदा, थोड़ी जी विचार चाहिदी है, थोड़ा जिहा सत्कार चाहिदा है, तलखी विच नहीं आना चाहिदा। जे पति गलती करदा प्यार नाल समझाना, समझदे आ समझे तो पशु ही समझ आते, आखो श्री भाई सुनदे आ सुनदे इंसान है। तो मेरे कहण का मकसद, स्त्री के अंदर वाहिगुरु ने बड़ा बल रखे। तक लो राणी तारा ने अपने सत्संग दे शक्ति दे नाल राजे हरिश्चंद्र नू सत्संगी बनाया, सत्संगी नहीं बनाया, राजे नू धर्मी बना। राजा हरिश्चंद्र बड़ा धर्मी राजा है, और ए वस्तु कितों मिली? तेरी साध संगत ए सत्संग विचों मिली, नाम विचों मिली। तो आओ प्यारी साध संगत, आप भी धन हो जो ओ सत्संग विच आप सारे जुड़े हो। अज मैं तो यह समझदा भी सारा दिन ही तुसी सत्संग की अमृत वेले तो लैके आज सारा दिन नहीं, वाह ए है गुरु दी बख्शिश ते तुहाडा प्यार। जिस प्यार दे बूटे नू मालिक ने मेरा दे फल लाए, अमृत वेड़े भी कीर्तन, गुरुद्वारे भी कीर्तन, ते इधर सार तारा सिंह जी मची जी तो सारे परिवार नू बाबा जी ने प्रेरिया भी घर सत्संग होना चाहिए, कीर्तन हो जाए, बड़ा महत्व है। जिस घर विच गंदे जरासीम हो जाए ना ज्यादा, तो बीमारी पैण का खतरा हो जाता, फिर असी की करते हैं, DDT छिड़कते हैं ता जो जरासीम मर जाते, बीमारी तो बच जाते हैं। ते जिस घर च दुख कलेश आ जान, बाबा जी बचन करते सन उथे कीर्तन हो गया, आखो श्री वाहिगुरु, बाणी का अमृत छिड़को, नाम रूपी अमृत छिड़कोगे तो फिर की होगा, नस वजो किल विखो करता कर। इथे गुरु आ जाए तो इन्हां बच्चियां ने बड़ा उद्यम किया, बड़ी गुरु दी मेहर, यंग हन दोवें, पर मैं तो कहांगा जवानी सफल नहीं, तो जवानी मस्तानी होंगी। जवानी एक ऐसा मोड़ है, चंगे पासे तो तुरना ही नहीं ना, चंगी गल तो करनी नहीं ना। किसे गुरमुख ने लिखिया भी एक जवानी दूजा धन पले, फिर साई दी मेहर होवे तां सीधा चले, नहीं तां डिंगा ही डिंगा तुरदा जांदा। तो ओ नौजवान बच्चे जो रोज आके गुरुद्वार जुड़दे हन, ते इन्हां बच्चियां ने उद्यम कीता है, इन्हां दा उद्यम सफल, सत्संग कराया है, गुरु दी बख्शिश प्राप्त कीती है, फिर इन्हां दे उद्यम नाल आपां सारे गुरु नाल जुड़े हां, ए भी वड्डा पुण। बाबा जी वचन करदे सन किसे नू गुरु नाल जोड़ देना इस तू वड्डा पुन कोई नहीं है, किसे नू तोड़ देना इस तू वड्डा पाप कोई नहीं। तो इस परिवार ने जो कालना काली है, तो गुरु बाबा बख्शिश करे, आप अरदास करनी है, इन्हां बच्चियां दे सिर ते गुरु सदा मेहर प्रयात, राज जोग भक्ति शक्ति सारियां दातां गुरु बख्शे, इन्हां दे उद्यम नाल आपां जुड़े हां, सानू भी गुरु आप दे चरणां नाल जोड़ी रखे, ते नाम बाणी दी दात, ते कीर्तन दी दात
ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਹਿਲੇ। ਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਪੜ ਲਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਮ ਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ।

अनंत सावधान पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंत सावधान पाठ

गुरु का वचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं देवे, भाई नशा के जाले, खमाल अंगी के तन आश्री शब्द सर्वन करो तीन ताल।

नानक गुर खोए हम भंगा, हम होए मिल होए इक रंगा। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी पुरब असी मना रहे हैं। शहीदी पुरब असी हर साल मनाने हाँ, हर साल मनाते रहेंगे। मेरे दिमाग दे विच एक ए ख्याल, एक ए जिज्ञासा पैदा हुई कि गुरु महाराज जी नूं तत्तियां तवियां ते बिठाया गया, उबल दे पानी च उबालिया गया अते सड़दी रेता उन्हां दे सीस ते पाई गई। ह्यूमन फॉर्म विच किस तरह पॉसिबल है कोई शख्स इतनी पेन दे विच दी जा सके? व्हाट मेड हिम गो थ्रू ऑल दैट? इट इज अनइमेजिनेबल थिंग सो उसका जो जवाब है वो गुरु अर्जन देव जी महाराज आप देंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने इस शब्द दे विच जो विचार दी लड़ी साड़ी अपने आप नू लभण दी, अपने आप नू पहचानन दी चल रही है, वही आधार है, वही स्ट्रेंथ है कि गुरु महाराज जी इस सारे दे विच दी गुजर गए। महाराज जी ने इस शब्द की लाइन दे विच आख्या है, नानक गुर खोए भ्रम भंगा। कहते हैं गुरु ने मेरा जो भ्रम सी वो तोड़ दिता। जिस तरह कल दे कीर्तना दे विच भी आख्या गया सी, जब लग टूटे ना ही मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। एज लॉन्ग वी लिव इन द इल्यूजन वी कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम पेन, फ्रॉम सफरिंग, फ्रॉम मिजरीज। एंड दिस इज बियॉन्ड अवर thinking, beyond our imagination, that someone in human form can go through this much pain. But then how Guruji took all that the answer is कि गुरु महाराज जी ने अपने आप नू पहचान लिया सी। गुरु महाराज जी ने अपने आपे नू पहचान लिया सी। गुरु महाराज जी नू ए पता लग गया सी, वो ए जानते सन कि वो कौन हन, क्योंकि अज उन्हां दा शहीदी दिन है। सेल्फ रियलाइजेशन दे उत्ते साड़ी विचार चल रही है, तो ये शब्द इतना एक प्रोफाउंड शब्द है, इतनी प्रोफाउंडनेस के नाल भरिया पिया है
जो कि यह एक्सप्लेन करता है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज फाउंड हिज रियल सेल्फ एंड आफ्टर फाइंडिंग द रियल सेल्फ गुरु जी नोज कि ओ जड़ा मेरा सेल्फ है, ओ जड़ी मेरी होंद है, ना ओ मरता ना हम डरे, ना ओ मर सकता है इस करके ना हम डरिया, इस करके मैं डरिया नहीं। देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर मी टू डाई। ना ओ मरता ना हम डरिया, जब वो मर ही नहीं सकता, जो मैं हां वो मर ही नहीं सकता, तो फिर डर किस चीज का। ना वो बिन से अते ना ही उसनु डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसका कुछ बिगाड़िया जा सकता है, उसकी एग्जिस्टेंस नु जो है वो खत्म किया जा सकता है, जिस करके गुरु महाराज जी कहते ना हम कड़िया ना ही मैं कुछ चिंता की थी। I was not worried at all। अगे कहते हैं ना ओ निर्धन, वो जो मेरा रियल सेल्फ है, ना ओ निर्धन है ना ओ गरीब है, इस करके अगर कोई मैनू लालच दवे, कोई ऑफर करे, तो जब मैं निर्धन हां ही नहीं, तो मैनू किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई ऑफर मैं एक्सेप्ट नहीं कराऊंगा। ऑफर तो उही एक्सेप्ट करता है ना जो किसी ना किसी ढंग दे नाल निर्धन होवे, तो कोई उसनू कोई बहुत बड़ी ऑफर दे दवे। महाराज जी कहते हैं ना ओ निर्धन ना हम भूखे, इस करके हम भूखे नहीं, क्योंकि मेरा रियल सेल्फ निर्धन नहीं है, वो मेरी इनर रिचनेस नू कहते जो मैं जान गया कि हाउ रिच आई एम विद इन माई सेल्फ, इस करके देर वॉज नो हंगर लेफ्ट बिहाइंड, कोई भुख नहीं सी रह गई। फिर आखते हैं ना उस दुख ना हमको दुखे, जदों मैं अपने रियल सेल्फ नू अपने अंदर जाके पाया कि उसकी नेचर ए है कि उसनू कोई दुख नहीं है, उसनू दुखाया जा ही नहीं सकता, चाहे तत्तियां तवियां ते बिठाल दियो, चाहे अग उबाल दियो, चाहे साड़ दियो, पेन कैन नॉट टच द रियल सेल्फ। पेन उथे तक पहुंचती ही नहीं है। सो जिस सेल्फ रियलाइजेशन की असं गल कर रहे हैं, उस सेल्फ की एग्जाम्पल साढ़े सामने गुरु अर्जन देव जी रख रहे हैं कि वो जो साडा रियल सेल्फ है, जो साडा अपना आपा है, कहते वो पेन फ्री है, ओ इतना दूर है पेन तो, इन्हां तमाम चीजां तो, कि उथे पेन पहुंच ही नहीं सकता। ना उस दुख ना हमको दुख है, इस करके हमको कोई दुख ही नहीं है। गुरु महाराज जी कोई दुख नहीं लगा। अगे चलते हैं, कहते आफ्टर फाइंडिंग माई रियल सेल्फ आई रियलाइज दैट देयर इज नो वन हु कैन किल इट डिस्ट्रॉय इट अवर ना को मारन वाला, और कोई भी इसनू मारन वाली हस्ती शक्ति नहीं है। जियो हमारा, कहते मेरा ये जड़ा सेल्फ है ये हमेशा ही जिएगा, हमेशा जिएगा। जियो हमारा जियो देन हारा। अगे चलते हैं, ना उस बंधन ना हम बांधे, कहते उस सेल्फ नू कोई भी बंधन नहीं है। हां जड़ा फेक सेल्फ है, सूडो सेल्फ है, जड़ा असी बनाया होया सेल्फ है, वो तो अनेक बंधना दे विच है, बंधन ही बंधन हैं। असी उतनी देर तक बंधन च हां जितनी देर तक असी अपना रियल सेल्फ नहीं ट्रेस किया। रियल सेल्फ नू रियल आपे नू कोई भी बंधन नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ना उस बंधन ना हम बांधे, इस करके मैनू भी बन्या नहीं जा सकता। गुरु अर्जन देव जी नू
कैदखाने दे विच पान दे बावजूद भी गुरु अर्जन देव जी ए कहंदे हन कोई मेनू बन नहीं सकता, ना उस बंधन ना हम बंधे, ना उस धंधा ना हम तांदे। एक होर बड़ी मजेदार गल है कि उसनू कोई धंधा करने की लोड़ नहीं है, इस करके मेनू भी किसी धंधे की चिंता नहीं, क्योंकि वह अपने आप कंप्लीट है। उसकी जिहड़ी होंद है वह अपने आप एब्सोल्युटली कंप्लीट है। ना उस धंधा ना हम तांदे, ना उस मैल ना हमको मैला, उस मेरे सेल्फ नू कोई भी मैल नहीं है, इमैक्यूलेट है, एब्सोल्यूट प्योर है, स्पॉटलेस है, कोई भी मैल नहीं है सुख, ना उस मैल ना हमको मैला। इंसान मैल तो रहत उदों ही हुंदा है जदों वो अपने मैल तो रहत सेल्फ नू डिस्कवर कर ले। ना उस मैल ना हमको मैला, उस आनंद ता हम सद केला। कहिंदे ओ जिहड़ा मेरा रियल सेल्फ है वह हमेशा ही आनंद च ब्लिस्क रहिंदा है। दैट इज वाई आई एम ऑलवेज इन ए स्टेट विच वी कैन कॉल प्लेफुलनेस। सो इवन ऑन सिटिंग ऑन दैट हॉट प्लेट बीइंग बॉयल्ड इन द बॉयलिंग वॉटर, गुरु अर्जन देव जी स्टेट ऑफ माइंड वॉज वेरी प्लेफुल इन द एक्सटेसी इन द ब्लिस। वाई? क्योंकि दैट वॉज द ट्रू सेल्फ इन विच गुरु अर्जन देव जी वॉज लिविंग। कहते हैं उस अनंत हम सद केला, ना उस सोच ना हमको सोचा। कहते ना उन्हों कोई सोच है, चिंता फिक्र है। जब मेरा रियल सेल्फ ऐसा है कि उत्थे कोई सोच ही नहीं है, फिर मैनू भी कोई सोच नहीं है, बेपरवाह। असी उतनी देर तक फिक्रां च हां सोचां च हां जितनी देर तक असी अपने रियल सेल्फ च नहीं गए। ना उस लेप ना हमको पोचा, ना उस भूख ना हमको तृष्णा। उसनू कोई भुख नहीं है, भुख के कारण ही तृष्णा होंदी है, तो फिर कहते सानू भी तृष्णा नहीं है। ना उस भूख ना हमको तृष्णा, जा ओ निर्मल ता हम जचना। कहते जब ओ निर्मल है मेरा अपना आपा, मेरी असल होंद, मेरा असल सेल्फ, वो एब्सोल्यूटली इमैक्यूलेट है, निर्मल है, इस करके कहते मेरी इनर ब्यूटी जड़ी है वो बहुत जच रही है, मैं जच रहा हां, खूबसूरती है। क्यों? कि मेरा इनर जो है, जो मेरा सेल्फ है, कहते वो बिल्कुल निर्मल है। जाओ निर्मल ता हम जचना। अखीर चल के कहते हम किछ नाही, जो मैं कुछ सोचता सी कि को मैं हां, मेरी कुछ हस्ती है। जिस तरह भगत रविदास जी के शब्द चाहता ना, जब हम होते तब तू ना है। जदों तक असी हां मैं हां, उदों तक फिर तू नहीं। गुरु अर्जन देव जी उस अवस्था च सन जिथे जाके जब हम होते वो गल खत्म हो चुकी सी। हुण की कहिंदे हन, हम किछ नाही, कहिंदे मैं हां ही कुछ नहीं। मेरी अपनी सेपरेट ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई मेरी सेपरेट एग्जिस्टेंस है। मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम किछ नाही, मैं कुछ भी नहीं है। जब मैं हां ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उन्हों दुख किवें लगे, जो चीज है ही नहीं उसनू किवें बंधन च पाया जाएगा, जो चीज है ही नहीं उसनू किवें साड़िया जा सकता है, अते जो है उसनू साड़िया जा नहीं सकता। वो शुद्ध अकाल पुरख वाहिगुरू है, वो शुद्ध परमात्मा है, वो निराकार है, वो आत्मा है, वो जोत है। हुण जोत नू कोई साड़ सकता है? रब्बी जोत नू कोई बर्न कर सकता है? उसनू कोई कट सकता है? कहिंदे हम किछ नाही, एक है ओही, आगे पाछे एको सोई, अगे पिछे
ਇੱਕ ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤਮਾਮ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਮ ਕਿਛ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਈ। ਅਖੀਰ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਬਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਕਾਨ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਹੈ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੇਬਲਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਬਲਸ ਹਨ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੇਬਲਸ ਹਨ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੇਬਲਸ ਹਨ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਲੇਬਲਸ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਬਲਸ ਹਨ। ਦੈਨ ਵੀ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਦਿਸ, ਆਈ ਐਮ ਦੈਟ, ਆਈ ਐਮ ਦਿਸ, ਆਈ ਐਮ ਦੈਟ, ਆਈ ਐਮ ਦਿਸ, ਆਈ ਐਮ ਦੈਟ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਨਟਰੂ। ਉਹ ਇਲੂਜਨ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੈਗਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਗਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮ ਜੋ ਪਰਮ ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੇਬਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਭੰਗਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹੈ
ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁਗ ਜੁਗਾਂਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਦ ਗੁਰ ਏ ਨਵੇਂ ਜੁਗਾਂਤ ਗੁਰ ਏ ਨਵੇਂ, ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਏ ਨਵੇਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਗਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ

जो सवाल पहला भी पूछा गया सी, इज अवर ट्रू सेल्फ और इज अवर ट्रू सेल्फ अवर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट टू थिंग्स. सो अवर कॉन्शियसनेस इज अवर ट्रू सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस. सो जो प्रैक्टिस है वो ये है टू बी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम. इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस स्टे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस बी अवेयर ऑल द टाइम दैट आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस. अगर तुसी ओ करोगे तो तुसी अपने ट्रू सेल्फ दे नाल अपना रिश्ता गंड रहे होगे. द मोर यू डू द मोर क्लोजर यू गेट. सो जितना ज्यादा अभ्यास करते जावांगे उस दे विच होर भी चीजा हम जो अगले कीर्तना च विचारियां जानदियां उतना असी अपने ट्रू सेल्फ दे नजदीक पहुंचते जावांगे. उतने ही शांत हुंदे जावांगे, उतने ही ट्रैंकुल हुंदे जावांगे, उतने ही स्टिल एंड साइलेंट हुंदे जावांगे, उतने एकांत और चुप रहने की आदत ज्यादा बन जाएगी. जो जो ये चीज बढ़ेगी एकांत प्यारी लगेगी. महाराज जी गुरु नानक साहब जी की बाणी की एक तुक है, रहे एकांत एको मन वसया आसा महे निराशो. कहते वो सज्जन फिर एकांत विच रहिंदे हैं ज्यादा क्योंकि अपने सेल्फ नाल रहिंदे हैं. एकांत का मतलब यह नहीं कि कल्ले हुंदे हैं, वो हुंदे हैं परमात्मा दे नाल, वो हुंदे हैं अपने अंदर उस जोत दे नाल. जो उस जोत दे नाल जुड़िया पिया उहदा कदों दिल करदा बाहर निकलू, टाइम वेस्ट करन ते अपने आप नूं डिस्टर्ब करन, उसनूं तां मुश्किल बन जांदी है अगर उसनूं अपनी उस जोत नालों टुट के होर किसे दे नाल कुछ बैठना पै जाए. सो रहे एकांत एको मन वसिया आसा महे निराशो, उसकी यह अवस्था हो जाती है. गुरु चुप की खिमा नंद साहब का पाठ सारे राम.

0: चार दिनी जब हर पाव जल तरना।
1: कैसा 100% गैस। और फिर साढ़े सामने ही है, टीचर ने तो एक बार दस देता तो उनके बस में काम तेरा हो गया, तू पास हो गया, बस हूं अगले साल फिर गैस लावांगे। नहीं, गुरु साहबान ने ऐसी कृपा की, इथे रखे दिता, संभाल के रख दिता, भेजो जदों जेनू जिथे जरूरत पवे। ए गैस गैस हमेशा ही काम आए जाने ने, हमेशा ही, इसलिए इन्हू इथे महफूज करके रख दिता गुरु अर्जन देव। सच्चे पातशाह एक होर तो कहने ना।

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है उपाय है, किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिस दे द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

कहते हैं मैं परम गति पाले ही सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस दहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई, बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान अजिज्ञासु अशीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं संत जना के संग मिल बारे हुक्म ले इधर उधर ना फिर

साथ संगत दे विच आत्मक तौर ते अंदरले जीवन वालों रूहानी जीवन वालों स्पिरिचुअल लाइफ वालों आत्मक जीवन वालों जो बिल्कुल खत्म हो चुका है मरिया होया इंसान है केंद्र साधु दे टच दे द्वारा साधु दी जो एनर्जी दी फील्ड है उस दे विच आंदिया ही केंद्र ओ इंसान भी द्वारा जिंदा हो जाता है उस दे विच भी रूहानी जीवन की शुरुआत हो जाती है। साध के संग सदा प्रफुल्ल साधु दे संगत दे विच हमेशा इंसान दी जो सोल है वो डिवेलप करती है वो ब्लूम करती है। इस करके गुरु बाबा जी भगत रविदास जी दे इस आइडिया नू बाणी दे राही सपोर्ट करते हैं उस दे नाल सहमत हैं कि गुरुआं दी भगतां दी एक ही विचार है वो ये है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो प्राणा दा नाथ है वो सबना दा प्यारा है अगर उसनु मिलना है तो एक ही ढंग है वो है साध संगत प्रेम नाल गाओ।

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संघ है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्हां ने ढूंढ सज्जन संत पक्के हैं, जिन्हां ने पक्के होए आत्मक जीवन दे विच प्रपक साधुआं दे नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन ऐ जिहड़े कच्चे हन इन्हां ने ते इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे। साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभाव जोड़े हुए सन, सुभाव पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज होने हाँ, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हाँ, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साड़ी जो अवस्था है, साड़ी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। जेड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंध जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहिंदे सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहिंदे ओ सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहिंदे मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सिते, डिले नहीं कीते। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वह कहिंदे जिहड़ी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वह उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसनों सुनो फिर उसका असी अर्थ करांगे।

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: ये बड़ी पुरातन रीत आप दो मिनट लिए भी श्रवण करो और गुरु अर्जुन देव पातशाह जो अपनी बख्शिश कर रहे हैं पंच ताल दी बराबर दी सवारी दी ये रीत है।

क्यों चली जी? मां ने आख्या जान न देसा सोडियां। साहब जी जे तुठे हो ना ते दात मेरी झोली विच पा दियो, ये सेवा सोडी करनगे। गज के आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिन्हां दे अज आगमन मनाए जा रहे हो, इन्हां दी परदादी मां मां पानी सत संग जी बड़ी बख्शिश होई है मां ते। एक ते ओ गुरु पुत्री है, दूजा गुरु दे घरों है, तीजे ओ गुरु दी मां है, चौथे ओ गुरु दी दादी है, गुरु अमरदास दी सपुत्री है, ते गुरु रामदास दे घरों है, गुरु अर्जन साहब दी मां है, सर्वशक्तिमान सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब दी दादी है सात संगत। इस खानदान दी मालिक है, इस खानदान नूं जन्म देण वाली मां है। जान लंदे

बादशाह कहण वाले कह छट देने। भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतारा दे बड़ा खंडन कर दिते, उन्होंने दिल विच कोई भेद सी, फर्क सी। बादशाह कहण लगे, नहीं मेरा किसे नाल वैर नहीं, मैनू जिवें वाहगुरु ने गल्लां आखियां ओ मैं संसार नूं दस रहा। दूजी गल, उन्हां तों विछोड़ के जे मैं आखां मेरे पैरां दी पूजा करो तां ते मैं भुल विच हां। मैं कहिंदा बई नहीं, ओ वी दस रहे ने, मैं वी दस रहा, उस वाहगुरु दे तुसी वी सेवक बनो, इसलिए मेरा किसे नाल वैर नहीं। हजूर कहंदे ने

0: धरियो गुर हथ, जाकै बसीस धरियो गुर हथ। सब साथ संगत प्यार नाल आखो सतनाम
1: श्री वाहे,
0: फिर आखो सतनाम
1: श्री वाहे।
0: ये शब्द भी धन सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी की बाणी दा है। मेरे हीर है रतन नाम हर बसिया, नाम नूं रतन आख्या और ये अमोलक रतन है। साईं नाम अमोल, कीम ना कोई जान दो, ये अमूल्य है। अमूलो अमूल आख्या ना जाए, हीरियां दी रतना दी कीमत। जो असी पहली बार 71 च गए यूके, तो कोई नूर हीरा वेखण गए, चाहे साडे कोल नहीं पर सानू पता ना साडा है। हर सिख दे मन च आउंदा भी साडा है, धोखे ना लै गए, हीरा फेरी करके साथों लै गए, ये साडा है। असी वेखण गए, उत्थे कीमत लिखी हुई सी, इहदी आ कीमत है, ऐस हीरे दी आ कीमत है, ऐस रतन दी आ कीमत है। तो जिहड़ा ए रतन है ना नाम, इहदी कोई कीमत नहीं पा सकदा। सब आखो सत
1: नाम श्री वाह।
0: साईं नाम अमोल, कीम ना कोई जान दो, इहदी कोई कीमत नहीं पा सकदा। ते महाराज कहिंदे मेरे हीर है मेरे हिरदे च, नाम उदों वस गया, ये रतन अमोलक रतन नाम, जदों मेरे गुरु ने मेरे सिर ते हाथ रखिया। मेरे हीर है रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा, मेरा गुरु समरथ है। मेरे गुरु ने जदों मेरे सिर ते हाथ रखिया ना, तो यह नाम मन च वस गया। एक है नाम जबान ते रहना, एक है मन च वस जाना, फर्क जे बहुत फर्क है। इन्ना फर्क है कि कोई बंदा कही जावे खंड खंड खंड खंड खंड कही जाए, तो कोई बंदा खंड खा लेवे, इन्ना ही फर्क है। भाई साहब गुरदास जी ने भाई साहब नूं वर मिले सतगुरां वल्लों, भाई साहब तुहाडी बाणी गुरबाणी दीआं कुंजियां, जिवें चाबी तो बिना ताला नहीं खुलदा, किड्डा कीमती ताला होवे चाबी नहीं नहीं खुलेगा। गुरबाणी दा रहस उन्ना चिर समझ नहीं आऊगी जब तक भाई गुरदास की कोई बाणी ना पढ़े। ते वर भाई गुरदास की बाणी, बाणी दे अर्थ ये भी वर दे दिता। भाई गुरदास की बाणी गुरबाणी दे तुल, जिथे जाओ भाई गुरदास की बाणी गाई जाती। तो भाई साहब व्याख्या कर रहे ने, खांड खांड कहे जेहबा ना स्वाद मीठो होए। ऐसी मिसाल दिती है, जिहड़ा एक दिन भी स्कूल नहीं ना गया ये गल वह भी समझ सकता भी खंड खंड आखण ना मूँह मिठा नहीं होना। खांड खांड कहे जेहबा ना स्वाद मीठो होए, अगन अगन कहस उतन शीत ना विनाश है। आ गया कही जावे सर्दी विच, जिते स्नो पैंदी है कही जावे अग अग अग, सर्दी दूर नहीं होनी। कैसी मिसाल है, चंदन चंदन कहत होत ना सुबास बास, चंद चंद कहत उजियारो ना प्रकाश है। मस्या दी रात नूं कोई कही जावे चंद चंद चंद, चढ़नी पैना। चंदन चंदन कहण ना सुगंधी नहीं आ जानी, चंद चंद कहण ना प्रकाश नहीं हो जाना। वैद वैद कहत ना मिटत रोग काहू को, बीमार आदमी बुरख बुरखार चढ़िया होया दुखी है कही जावे वैद वैद वैद, ਉਦੋਂ ਵੈਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਕੈਸੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਵੈਦ ਵੈਦ ਕਹਿਤ ਨਾ ਮਿਟਤ ਰੋਗ ਕਾਹੂ ਕੋ, ਦਰਬ ਦਰਬ ਕਹੇ ਕੋ ਦਰਬੇ ਨਾ ਬਿਲਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ ਨਾ ਰਹਿ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ ਨਾ ਰਹਿਤ ਆਵੇ, ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਨ ਉਦਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਵਸ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ। ਨਾਮ ਮਨ ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ, ਆਦਾਂ ਵਿਆਦਾਂ ਉਪਾਧਾਂ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਭ ਤਾਂਕਾਂ ਨਸੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਸਭ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲੱਥ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਏ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੂਸਟਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਵੀਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਭਰੀ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਦੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ

एक रूप अत अनूप मोह महामद भई किंकनी सब चणत काल खेल पाए जी काल कलम हुक्म।